ठकड़ा बोली तर्सी एकी होली जुंगा लामा लामाले नंका दिन बुढ़ो भाको आईना।

0: Apareciendo de un drama de Dios. Existiendo nada, camino.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़की

0: झगड़ा।
1: ओ कोका कोला तू तेरी स्विच जो।
0: ओ एनीवेज हजरत अर्ज किया है के
1: लो जी टाइम सी सवेर दा पल खाया पेट दा मैं कुत्ते यार छेड़ दा मैं बिल्लियां ना खेड़ दा मैं वेला बैठा किन्नी देर तक सी फुल आउं तक कंगी शंगी बाई यू ये मंजी शंगी डाई यू ये स्टाइलिश पेंट मैंने पाई यू ये इनी देर नू आया मनु फोन मनु टोनी कहंदा
2: ओए वो बार आई यू ये हे।

kamayanan mo sa Santo? Alam niya, ako sa pagkakit ang mga kaboyan sa ating amin. Mga, itawa ka ka, may nasa ako sa MC siya, Aruto. Arulay ka eh. Diba ko, arag dami nila nga. So, for time. Ah, kasi, bakit? Tama, tayo sa mga kakakot siya, ano ko? Bakit ako mo siya kaya kaya puti ka sa mga yata sa Marate? O, ako sa ko eh. Ah, yung mga parati, bakit sa ka? Ano na, kung ka? Kung pa ka pero, kung pa ka pero, pa ka? Atau macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam एक महीना मार दे रहे एक सूटी आ दिले बोलना दिले तो आपको किसे को आरोप आता है महिला काफी बहुत से बिकाला है आपको खर्चा खास करेगा तो जो कि आपने मारे समारे करे अब माँ तूने तो नगर पालिका को नहीं कमिटी को तो आप किस पासवर्ड में तुम्हारे काम से तुम्हें तो नगर पालिका में एक साल के पास होते हैं नगर पालिका से करें तो काफी स्वादी दरम तैयार बयासी साल चार महीना देखिए तिरासी साल और सात लाख के तो सम्मान को प्रवृत्ति हरू उसमें समावेश भाई को था संविधान को भारत की से सात वाला चरण करने की नाच में अधिकार क्षेत्र भित्र का अधिकार निरूपण करना गाँव पालिका और नगर पालिका ने प्रत्येक गाँव पालिका में उपाध्यक्ष को कार्यकर्ता मारा प्रत्येक नगर पालिका में उप प्रमुख को कार्यकर्ता मारा तीन सदस्य न्याय समिति रहने रहा न्याय समिति में गाँव सभा और नगर सभा का मध्य का निर्वाचित करेगा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था बनी अनुसार न्याय समिति संचालन में रहे तो किसान समुदाय का उन्हें जनता रखना संबंधित विवाद और को समाधान समुदाय में समुदाय का व्यक्ति और बहुत के काम आएंगे और को उन्हें हमें सारे को समाप्त करने के द्वारा इन चारों के साथ इस समुदाय में तथा सामान्य प्राकृतिक स्थान है विवाद और को अर्थिक साथ बंगाल है विवाद को स्थान है समाधान करे न्याय में सभी को सुनिश्चित करे नेम्सी का आर्थिक विवाद समाधान करे सामाजिक समाधान तथा रसोगार काम करने विरोध करने के स्थान है न्याय समिति ने आखिर बाय को था समिति को आखिर बाय को था कोई उसे पूरा करना दिनेश्वर नगर पालिका को न्याय समिति ने सारे संपादन करने को था दिनेश्वर नगर पालिका को न्याय समिति समर्थन करना है का विवाद है उसको सबका किसी में भी तो कौन सा आरोप देखिए था समस्या आरोना आधारित भाई ये प्रतिदिन प्रयास आई है को दिनेश्वर नगर पालिका का प्यार अनुसार देश रहेगा कौन का श्री कमला रखने कौन से श्री काम की सजाए से किस पर से श्री किरण होली नौ साल की को अधिकार दे रहा नौ साल की को अधिकार दे रहा कोई काम से को उनका जोखिम निर्णय कर समय कर रहा निरुपाय करने के बाद जो का सब कुछ देख रहा मिल मना को प्राप्ति आता है और मात्र निरुपाय करने के बाद जो का कंसाइड श्री रहेगा सं तूने कानून में आप ना लाखोंपिये को भाई नौ साल की मात्रा तूने विवाद को आप ना कार्य भाई करो कुछ मिटेरे पॉइंट चेंज दिया निर्माण देने देवता करे को सब बातें बेकार करने का उद्देश्य और वर्षा भाई भाई करे का कार्य करना नौ साल की मात्रा का भाई का हो जाए साक्षर किसी बात को जानकारी कराऊं लेकिन इस बात को आवश्यकता के बारे में जानकारी कराओ ना मैं इस काम की नाजुकता का सबसे बड़ा झूठा हूँ पासवर्ड कराओ ना देखिए का समस्या का सबसे बड़ा तो ये को मारा अवस्था अवस्था कराओ ना मैं इस काम की सरकार में इस सरकार का दिन हो गया कि मैं इस काम के लिए काम की सेवा कर आवश्यकता को मौत कराओ ना आर्थिक वर्षा के साथ तैयार की दुआ की मांग इस समिति बैठा भय करने का चल रहे हैं मुख्य मुख्य सुनो आए आर्थिक वर्षा की तैयार की मांग इस समिति में करना और कल से चालू दिन तोता भय का था दस मार्च इस साल एक सरकार संचालन एम डिजाइन सरकार को सभा संचालित होते हुए अंतर्गत जन्म दो सौ दिया तोता भय के मां
নয় এটা বিবাদ সমাধান হয়ে থাকেন বা কিছু এটা বিবাদ প্রথমে মারা আনতে পান সেটা জানি তখন সরকারি শুক্রবার সেই অন্তর্গত জন্য কত এটা নিজের দরকার হয়েছে না কেউ এটা বিবাদ সমাধান হয়ে থাকেন মানে তার একটা বিবাদ সমাধান এলো বাকি রয়ে থাকেন এখন ইয়ে আগে আমার জন্য হঠাৎ এটা বিবাদ মেল মিলাপের মাধ্যমে তাকে সমাধান করে থাকেন মেল মিলাপ হলে নাকি আদালত দেখার সংখ্যা একরা নিবেদন

0: सिद्धिनेश्वर मंदिर में दर्शन करना आउनुहुने भक्तजन हरुमा हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी को साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजापाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

बनायो धाउने पत्ता को चिना हेरे भय हिड़ा भरेंग तिम्रो लड़के जो